बोले जगदम्बैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, काशी के कुतवाल काल भैरव महाराज की जय, धरती मैया की जय, अल्पना मैया की जय, भारत माता की जय, सारे जगत के देवी देवताओं की जय, हरा हरा महादेव नमः।

0: 다녀오는
1: 블랙몬 네 들리고 나라이 브러스 라이 들리고서 본 라이 인도원 그 들어오면 되는 브루치 라네 빨리 가오라 가라 비노르 सलाम कर देना रे यहां बोला जी उनके बरन दी रोड पर निकाल लो उन्हें जितने नेक्स्ट पर निकाल लो पर उन्हें जितने नंबर आप पर निकाल लो उन्हें जितने दिन नाव पर निकाल लो उन्हें जो लाचिन निकल पाना लाचिन उन्हें से नाव की कब पा निकल कर ही कब पा ये के बारे के बारे में रद जाए के बारे में मैं उन्हें विचार मेरा उन्हें विचार उन्हें ሳምናቱነት እውነት ብቻ ነው እዛ ምላሽ ሲቸር ካስማስ ወሬም በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ